0: अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तंत्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य अवदत् यत् सहकार आन्दोलनं परिष्कारस्य अंकीकरणस्य व्यावसायिक प्रबन्धनस्य च माध्यमेन विस्तारस्य नूतने चरणे प्रविशति। सहकारिता मंत्रालयस्य पञ्चमं स्थापना दिवसं संबोधयन् श्री शाह अवदत् प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे पञ्चसु उत्तम प्रदर्शन सहकार संस्थानां परिचयं कर्तुं श्रेणी संरचना घोषिता अस्ति। गृहमंत्री श्री शाह सहकारिता मंत्रालयस्य प्रशंसाम् अकरोत् यत् विगत पञ्चवर्षाणि यावत् सहकारस्य माध्यमेन समृद्धेः मंत्रस्य अनुसरणं कृत्वा कोटिशः जनानां जीवनं परिवर्तितमस्ति।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का